0: ये वृक्षों समकरी चे अदलाई कमेलाई मुलेन मु तंकाल मुलेन मु तुम समकरी आलो आसुई तुआ चिंता तो कोम आपुई तुआई न्योई नंत तुआ ची आप चलो पेहो मंगेले जी मैं इता जाओ ये के कौन तुआ ची हमु इकिनी तुआ
1: Lleva de lo que a mí me daña.
0: Y Julieta, el pelo del año antes de que piñe.